0: Morning, Mr.
1: Johan. Good morning. Rahul.
0: Hi. नौकर ने खून किया, नौकर ने खून किया, आओ.
1: ए, अरे रे रे रे, वो देखो.
0: Hi guys. आओ. Hi.